0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: क्या बना
2: मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
4: हेलो
5: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
4: हाँ जी बोलो।
5: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
4: हाँ जी देते।
5: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
4: कहाँ भिजवाना
5: है मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
4: है? जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
5: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
4: किसको जी?
5: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
4: क्या गिर गया?
5: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
4: भाई साहब क्या उठवाना है?
5: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
4: हाँ
5: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
4: उठवाना है।
5: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
6: हेलो
4: हेलो
6: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
4: कहाँ से बोल रहे
6: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर,
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
9: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
10: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
11: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
12: I am not going to bed with you ever again.
11: But why? What did I do?
12: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
11: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
12: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
11: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
12: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
11: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आप कताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब से। बिल्कुल जी, इनका जन्म ऑफ कोर्स 1919 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 2000 सन में ये मुंबई में हमारा साथ छोड़ के चले गए। और इनका जमाना जो शेर जानता है वो है कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। लेकिन इनका एक गजल के दो शेर आपको नजर करूंगा जो मेरे बड़े पसंदीदा हैं। कहते हैं कि यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं। वाह जी वाह, तो जो रोग हुआ है आपको उसका इलाज भी आप ही के पास है। है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपके ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Inefficient,
2: very complex,
3: clumsy और
4: confusion ही confusion।
0: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right, you can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR। काम अनेक, software एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।
5: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कताशी है आपके साथ, और मैं ना एक ऐसे शहर से आता हूँ तो जो थोड़ा सा क्वेंट टाइप का हुआ करता था, जो थोड़ा सा शांत टाइप का हुआ करता था। अब तो वो भी सारे शहरों की दौड़ में बड़ा आगे है, लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक जमाने में लखनऊ का अंदाज अलग था, और जब आप लखनऊ से निकल कर किसी बड़े शहर में जाके झांकते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि यार यहाँ तो लोग अलग ही रिदम में हैं, अलग ही लय में दौड़ रहे हैं। और शुरुआत में आपको कामिल बेजादी साहब का ये शेर याद आता है कि क्या तेरे शहर के इंसान हैं पत्थर की तरह, क्या तेरे शहर के इंसान हैं पत्थर की तरह, कोई नगमा, कोई पायल, कोई झनकार नहीं। अब ऐसी बात सच भी नहीं होती, क्योंकि ऑफ कोर्स आप शहर में नए आए हो, आप बस उन इलाकों तक नहीं पहुंचे हो जहां पे यू नो नगमा हो, जहां पे पायल हो, जहां पे झनकार हो। लेकिन शुरुआत में तो कामिल बेजादी साहब का ये शेर मेरे ख्याल से हर शख्स जो एक छोटे से शहर से उठ के एक बड़े शहर, एक दौड़ते शहर में आया है, उसको महसूस हुआ होगा कि क्या तेरे शहर के इंसान है पत्थर की तरह, कोई नगमा, कोई पायल, कोई झनकार नहीं। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, और ले गया हूं दोस्त नगमे भी, पायल भी और झनकार भी। स्टेडियम, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ एंड उसी के साथ अब वक्त आ चला है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: हाँ जी और आज के इस ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाएं शबाना आजमी के पिताजी कैफी आजमी साहब की लिखी हुई एक गजल जिसको जगजीत सिंह जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी आवाज दी उस गजल की एक छोटी सी कोशिश पेशे खिदमत है आपके लिए गौर फरमाइएगा

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपके ताशी है आपके साथ। और प्यार इतनी ताकतवर चीज होती है ना इश्क, लिटरली भाई, कि आपके लिए आपकी बायोलॉजी को बदल देता है, आपके देखने के नजरिए को बदल देता है इश्क। अब शेर सुनाता हूं आपको, ऑफकोर्स उसी से रेफरेंस दूंगा। आदिल फारूकी साहब का शेर सुने आप। कहते हैं कि ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। आय हाय हाय हाय। और इतना अच्छा थॉट है ना, इतना प्यारा थॉट है, क्योंकि सच में यार जब किसी से प्यार हो जाता है, जब किसी से दिल लग जाता है ना, तो चेहरा, फिगर, मतलब ये सब चीजें आई एम श्योर जरूरी होती हैं, बिल्कुल जरूरी होती हैं। लेकिन जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, वो इंसान जो इमोशनल वैल्यू आपके जीवन में ऐड कर रहा होता है, वो इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई सारे ये जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ये उतनी पकड़ रखना आप पे छोड़ देते हैं। भाई मेरे लिए तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, मैं सच बताऊं आपसे। जिम में भी वर्कआउट कर रहा होता हूं तो आसपास कई ढेर सारी लड़कियां रहती हैं, लेकिन जमीन देख रहा होता हूं, ऐसा हो जाता है मेरे साथ लिटरली। ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को मोहल्ले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
4: भेज। वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कोंडा में कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है, तो ये बंद करो
4: सर। बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Lead ke saath only on Mirchi. It's hot. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: कविता कॉर्नर
1: कि आप कताशी सुनाए आज की कविता आपको इस कविता के छोटे से कॉर्नर में। और बिल्कुल जी, आज की जो कविता है वो वेणुगोपाल जी की तरफ से आ रही है और कविता का नाम है उड़ते हुए। लिखते हैं कि कभी अपने नवजात पंखों को देखता हूं, कभी आकाश को उड़ते हुए, लेकिन ऋणी मैं फिर भी जमीन का हूं। जहां तब भी था जब पंखहीन था, तब भी रहूंगा जब पंख झर जाएंगे। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या ख्याल है कि दोस्त जहां से शुरुआत करी है ना, उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो उड़ान आप भर रहे हैं ये तो क्षणिक है, ये तो क्षण भंगुर है, कुछ देर की है, कुछ देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन लौटना तो हम सबको जमीन पे ही है, या फिर जमीन में ही है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: इट्स 9:30 PM। मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। जीते जीते ढेर सारी रिलेशनशिप्स में रहने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि रिलेशनशिप्स ना तभी चल पाती हैं जब आपको भूलना आता हो, जब आपको किसी मुद्दे से आगे बढ़ना आता हो, ऑफ कोर्स उस पे काम करके, ऑफ कोर्स उसको रिजॉल्व करने के बाद। लेकिन कई बार हमारे जीवन में होता पता है क्या है कि किसी ने, हमारे पार्टनर ने ही कुछ ऐसा किया जो हमने नहीं सोचा था कि वो करेगा, या फिर उसने हमें डिसअपॉइंट करा किसी ना किसी तरीके से, जो कि हर शख्स कभी ना कभी तो करता ही है। आपने अपने माता पिताजी को कितनी बार डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आपके माता पिताजी अब वो रट के हमेशा वही तो नहीं सोचते रहते, है ना, वो तो आगे बढ़ जाते हैं उस बात से। और वैसी जिंदगी में ना आगे बढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। और शेर सुनाऊं आपको मैं जमाल एहसानी साहब का कि याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ। शेर बड़ा जरूरी है, याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। जिंदाबाद, क्या बात है यार, क्योंकि भूलना ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। वो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको उस रिलेशनशिप को जिंदा रखना है तो। याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपके ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना जो बड़े जादुई होते हैं। आप दोनों एक पार्टी में हैं और आपने जबान से कुछ नहीं कहा लेकिन आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में बातें हो गई आपकी। अनु रिजवी का शेर आपको नजर है कि उसे हुनर है निगाहों से बात करने का, उसे हुनर है निगाहों से बात करने का, मैं बेजबान सा लगता हूं ये जबान लिए। हाय हाय हाय हाय, जहां इशारों से बात हो जाए वहां अगर जबान चलानी पड़े घाटा है दोस्त। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
2: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: सामान
3: उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो,
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपके ताशी है आपके साथ। और दोस्त, जिंदगी में ना कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपके जहन पे छप जाते हैं, और फिर आप कई बार जो दूसरे लोग हैं उनमें उन्हीं की तलाश कर रहे होते हैं जो आपको एक जमाने में मिले थे। हसन नासिर के दो शेर आपको नजर की, खुले दिलों से मिले फासला भी रखते रहे, खुले दिलों से मिले फासला भी रखते रहे, तमाम उम्र अजब लोग मुझसे उलझे रहे। और शेर आखिर की, दरख्त कट गया लेकिन वो राबते नासिर, राबते मतलब कनेक्शंस रिलेशनशिप्स, दरख्त कट गया लेकिन वो राबते नासिर, तमाम रात परिंदे जमी पे बैठे रहे। आय हाय हाय हाय, ये जो शेर है भाई, इतना जालिम शेर लगता है मुझे ये, कि दरख्त कट गया, पेड़ कट गया, दरख्त कट गया लेकिन वो राबते नासिर, तमाम रात परिंदे जमी पे बैठे रहे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और जाते जाते मिर्ची महफिल में अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका दाशी आपको नजर करे एक नगमा जो मेरे जहन में क्या बताऊं बड़े दिनों से टहल रहा है। हाँ जी, भूपिंदर जी की आवाज में ये जो नगमा है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और आज के ताशी अनप्लग्ड में मुलायजा फरमाएं।

0: 1980 में ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी की सारी लाइमलाइट लेकर चली गई थी रेखा।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इस शादी में रेखा की जो एंट्री हुई थी वो बॉलीवुड के मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है। रेखा आई थी व्हाइट साड़ी पहन के, बड़ी सी लाल बिंदी उन्होंने लगाई हुई थी और माथे में सिंदूर। उस टाइम उनके और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप के रूमर्स ऑलरेडी थे, तो सब लोग उनकी तरफ, सारे कैमराज उनकी तरफ देख रहे हैं। वो वेडिंग रिसेप्शन में आई आरके स्टूडियोज में, जहाँ ये हो रही थी गार्डन वगैरह में, और आके शी वॉज लुकिंग फॉर अमिताभ बच्चन। और वो अमिताभ बच्चन तब मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहे थे, वो उनके पास गई, उनको हेलो वेलो किया, इतनी सी ही बात हुई। उसके बाद ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़ी देर बाद जया बच्चन जो वहां मौजूद थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत साल बाद रेखा ने इस बात में क्लैरिटी दी कि वो किसी फिल्म की शूटिंग से आ रही थी और डायरेक्टली वो आ गई थी। तो ये सारा कुछ सीन हुआ था। फिलहाल सीन थोड़े म्यूजिक का पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
3: फेवर,
4: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता
4: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
3: नहीं
4: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ू
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

ये लेट 40s की बात है जब एक बार लता मंगेशकर जी एक स्टूडियो जा रही थी एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लता जी ने लोकल ट्रेन ली, उन्होंने देखा कि उनके कंपार्टमेंट में एक लड़का भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। वो ट्रेन से उतरी, वो लड़का भी उनके पीछे पीछे उतरा। लता जी ने एक टांगा लिया स्टूडियो जाने के लिए, उस लड़के ने भी एक टांगा लिया, वो टांगा उनके टांगा के पीछे पीछे चलता रहा। लता जी का टांगा स्टूडियो पे रुका, वो वहाँ पे उतरी, वो लड़का भी वहाँ पे उतरा। लता जी घबरा के अंदर गई तो पता चला कि वो लड़का तो अशोक कुमार का भाई किशोर कुमार था जो उनके साथ गाना रिकॉर्ड करने आया था। ये थी इन दोनों की पहली मुलाकात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

0: इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस फिल्मों में से एक है गाइड। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाइड बनाने का ख्याल कैसे आया था, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में देवानंद साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पर्ल बक, नोबेल लॉरियट, जिसने किताबें लिखी जैसे गुड अर्थ, वो इंडिया में आए, उन्होंने पिक्चर बनानी चाहिए हिंदुस्तानी एक्टर्स के साथ, सबसे मुलाकात की, हमसे भी मुलाकात की, हम कुछ क्लिक हो गए कि देव साहब आपके साथ फिल्म बनाते हैं, क्योंकि देखो भैया हम इतने बड़े स्टार्स हैं कि अगर हमें बाहर काम करना पड़े किसी बाहर के मुल्क में, तो जब तक हमारा सेंट्रल रोल नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। फिर तो मुझे किसी ने कहा कि गाइड पढ़ो, जो गाइड का रोल है देव साहब वो अपने भाइयों इंटरनेशनल उसको इंटरनेशनल बनाइए। मैंने गाइड को पढ़ा और मुझे लगा कि गाइड का ही कैरेक्टर इंटरनेशनली बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा जो हम पोर्ट्रे करना चाहेंगे। मैंने पर्ल बक अमेरिका में फ़ोन किया है, मेरे पास एक किताब है गाइड, अगर आप उसको पढ़ लें तो अगर आपके मन चाहे तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो उन्होंने कहा गाइड तो हमने पढ़ा है, तो मैंने कहा उसको बताइए आगे कैसे बढ़ें, आप अमेरिका आ जाओ। तो मैं अमेरिका पहुंच गया, उनके जाकर बातचीत हुई, हम क्लिक हो गए।
0: वैसे मैंने लाइफ में पहली बार देवानंद साहब को पता है कब देखा था, गाइड फिल्म में ही, बिकॉज मेरे फादर ये फिल्म बहुत देखते थे। छोटे होते ये फिल्म बड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन फिर जब बड़े हो गए दोबारा देखी तब समझ में आया कैसे ये फिल्म वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स विद चारू।

वहीं सिंगर शब्बीर कुमार को जब लता मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका मिला तो शब्बीर कुमार जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अक्सर कई सिंगर्स का यही हाल होता था जब उनको लता जी के साथ पहली बार गाने का मौका मिलता था, तो ये जब रिकॉर्डिंग करने गए वहाँ पे इनकी बोलती बंद हो गई या सिंगिंग बंद हो गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, आरडी बर्मन इनको क्यूज दे रहे थे कि अब म्यूजिक खत्म हो गया, अब तुम्हारी वोकल्स की बारी है, सिंगिंग की बारी है, लेकिन ये गा ही नहीं पाए। तब लता जी ने एक ब्रेक लेने को कहा।

कहा, वो इनके साथ बैठी, इनके लिए चाय वाय कुछ नाश्ता मंगाया, कुछ टाइम स्पेंड किया, उनको कंफर्टेबल किया, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हुई। ये गाने थे बेताब फिल्म के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची। आइकॉनिक सिंगर के येसुदास का हिंदी फिल्म डेब्यू हुआ था इस गाने से जो हम अभी सुनने वाले हैं। 1976 की फिल्म चितचोर, इसका ये ब्यूटीफुल गाना कंपोज्ड एंड रिटन बाय रविंद्र जैन, और येसुदास जी को इस गाने के लिए उस साल नेशनल अवार्ड भी मिला था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: मिस्टर गौतम,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा।
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ।
2: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ

0: soleil.
1: मैं पागल है क्या?
2: सब बच्चों वाला ये बच्चे मुझे कहा खाएगा।
1: सुन ले बात
2: मेरी बात
1: हाँ। सुन पहले बात
2: हाँ सर
1: और इसे बंद करिए। बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है सर। बोलिए
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है। छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: अमित के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

लाइफ में प्यार किए या मूवी नहीं देखी है ना, तो अपने आप पे एहसान करो, ये फिल्म देख लो प्लीज। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैंने ना ये फिल्म बिट्स एंड पीसेस में देखी थी रिसेंटली, मैंने पूरी देखी एंड व्हाट अ फन फिल्म टू वॉच। एक तो देखो इसमें वो आइकॉनिक सीन है, कॉमेडी सीन, जिसमें महमूद जी एज सन, ओम प्रकाश जी एज फादर को एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहे होते हैं। बाय द वे अंदाज अपना अपना में जो महमूद जी की वाह वाह प्रोडक्शंस है, वो नाम इसी फिल्म से आया है। एक और चीज इस फिल्म से आई है, 90s की फिल्म हसीना मान जाएगी में जो गोविंदा संजय दत्त के चाचा बन के लड़की के बाप से मिलने नहीं जाते, ओ यार वो चाचा वाला जो किरदार है वो भी इसी फिल्म से आया है, प्यार किए जा से, जहाँ पे किशोर कुमार जो शशि कपूर के दोस्त होते हैं वो शशि कपूर के फादर बन के जाते हैं। व्हाट कॉमेडी, प्लीज डू वॉच पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: प्रेम चोपड़ा साहब स्क्रीन पे जिस तरह के रोल्स करते थे, काफी लोग उनसे डरते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वो किस चीज से डरते थे, सुनिए एक बार सपनी नाम की एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग करते हुए क्या इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: तो उन्होंने साहब मुझे इस तरह कहा कि देखिए अब ये शॉट रेडी है, शॉट ये है कि आप सपेरे हैं, ये पटारी देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ, इसके अंदर सांप है। ये आपने पटारी को खोल के सांप को हाथ में उठाना और कहना है कि चल पुत्र बदला लेना अपना करके ऐसे फेंक देना। पहले तो ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा यार कि ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज से डर है तो वो सांप से है। बचपन में कुछ होता ना, कुछ दहशत कर दी, दूध नहीं पियोगे तो सांप आ जाएगा कुछ ऐसा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है, खोलने की हिम्मत ही नहीं। अपनी पगड़ी जो थी फेंकी, ये फेंका। मैंने कहा मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो पहले बताना चाहिए, ये तो पिक्चर ही सांप होगी। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूंगा। तो ये सांप में कुछ नहीं होता, दांत वांत निकाले होते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे बड़ी उस क्रीपिंग फीलिंग आती है, आई कैन नॉट होल्ड इट। नहीं तो एक नकली सांप तो अरेस्ट कर सकेंगे, मैं कहा नकली सांप से। तो साहब उन्होंने फिर नकली सांप पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और सारी फिल्म जो है उसके साथ।
0: वैसे किसी फिल्म में उनका ऐसा डायलॉग भी था कि सांप से मैंने ये सीखा है कि जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं टस लेता हूँ। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है जब अभिमान फिल्म आई थी तो ऐसे रूमर्स भी आए थे कि ये फिल्म किशोर कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा की लाइफ पे बेस्ड है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। तो किशोर कुमार की फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा बंगाली सिनेमा की एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस सिंगर डांसर थी। उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह ये थी कि किशोर कुमार चाहते थे कि वो एक होम मेकर बने, एक हाउस वाइफ बन के रहे, जबकि वो अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। वेल, अभिमान फिल्म में एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ का टैलेंट वॉज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द फिल्म। तो किशोर कुमार को जब ये बात की रूमर्स कहीं से पता चले, ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म के दो सॉन्ग्स वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब उनको ये पता चला उन्होंने बाकी के गाने गाने से मना कर दिया। फिर बाद में दूसरे मेल सिंगर्स को उनकी जगह पे लाया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hello, usko wahan se mat uthao, yaar. Hello.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है?
2: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।
6: पुरानी जींस चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है लिरिसिस्ट इंदिवर जब टीनेजर थे तो फ्रीडम फाइटर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लेट 30s अर्ली 40s की बात है जब उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वो देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, रिसाइट करते थे और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें करीब 3 साल जेल में भी रखा था। वैसे पूरब और पश्चिम फिल्म का भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ इंदिवर साहब ने तो लिखा है और उनकी रेंज एक्चुअली उसके लिए तो अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा। फिलहाल श्याम लाल बाबू राय जी, इंदिवर जी का ये रियल नेम है, उनका लिखा हुआ एक और गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पहलवानी और म्यूजिक क्या ही तगड़ा और सुरीला कॉम्बो है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा ही कुछ कॉम्बो था सुरेश वाडकर जी के घर में। उनके पिताजी पहलवान भी थे, म्यूजिक भी सुनते थे। सुरेश वाडकर ने भी ऐसा किया, शुरुआत में थोड़ी पहलवानी भी की और फिर म्यूजिक में आ गए। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मेरे फादर कुश्ती करते थे, वो मट्टी वाली कुश्ती, बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां की है अपने जमाने में। उसका ही असर कहिए, कंपलसरी अखाड़े में तालीम में जाना पड़ता था ताकि सेहत ठीक रहे थोड़ी सी। मगर वो भी, पिताजी भी संगीत के बड़े शौकीन थे, भजन वगैरह गाते थे, तो छोटेपन में वो भी एक जो हमारे ऊपर असर रहा संगीत का, वो बचपन से ही, उसकी वजह से सडनली मुझे गाते हुए सुना उन्होंने। 4 साल की उम्र थी मेरी, उनको कहीं से लगा कि इसको गाना सिखाना चाहिए, तो उस दिन से मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। 4 साल का होऊंगा,
0: बस यहीं से शुरू होके लड़के ने फिर अपने म्यूजिक करियर में 4 चांद लगा दिए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gambana. Murga, murga. La virgo a la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता।
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं
4: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La virpa, la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: Good
3: morning. Sir, मैं actually आज सुबह वाले request करना चाहता हूँ. मैं तो आज सुबह आप वो singing winging सिखाते हैं सर. तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े different होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन का है सर. नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा.
3: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ.
3: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: एनाकोंडा में कौन से गाने?
3: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया एनाकोंडा में यही फायदे मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया.
2: सर साहब
3: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा.
2: सुन ले बात
3: मेरी बात.
2: हाँ सुन पहले बात.
3: हाँ सर
2: और इसे बंद करिए. बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है. सर बोलिए.
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है, आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3, अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या एक्सपेक्टेशंस रखना गलत बात है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसे हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बस दुआ है आपकी। यूएस गया था और वहाँ पे एक जगह है वॉशिंगटन के पास, उसका नाम है आर्लिंगटन। आर्लिंगटन में एक्चुअली पेंटागन है और आर्लिंगटन में एक जगह है आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री, वहाँ पे जॉन एफ केनेडी की जो समाधि है वो वहाँ पे है। बहुत खूबसूरत जगह है, इट्स स्प्रेड ओवर 643 acres। उनकी जो समाधि है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर लगाए हुए हैं और उन पत्थरों पे बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स लिखे हुए हैं अलग अलग लीडर्स के। एक कोट जो है वो उनका है। जब वो प्रेसिडेंट बने, उनका जो इनॉग्रल एड्रेस था, तो उसमें एक बहुत फेमस लाइन है, वो कहते हैं कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत सालों पहले पढ़ा था मैंने, उस मोमेंट में पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई फेल्ट सो नाइस। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात लिखी है, इसका इम्पैक्ट अलग अलग लोग जब पढ़ते हैं अलग अलग चीजें होती। मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं ये आय जो है ये हम सब में बहुत अहम होता है। आई थिंक आय को हमने इतना बड़ा बना दिया और जहाँ आय आता है वहाँ एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मेरे को लोगों से ऐसी बात करनी चाहिए, लोग मुझे ऐसा ट्रीट करें। तो ये लाइन में मुझे समझ में आया कि ये मत सोचो कि मेरे साथ कैसा होगा, तुम ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। और एक्सपेक्टेशन के बारे में मेरे दिमाग में गुजरा कि महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अपेक्षाएं होना क्या खराब है। सिस्टर,
4: आप जब उस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तो मुझे गांधी जी की भी स्टेटमेंट याद आ रही थी, व्हेन ही सेड बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो समवेयर जो दुनिया है या कलेक्टिव वाइब्रेशन है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ही बनता है। इट्स वेरी इजी टू सिट एंड कंप्लेन ये ऐसा है ये ऐसा है, बट वी फॉरगेट ब्रॉडर लेवल पर भी आप छोड़ दें, कंट्री के लेवल पर छोड़ दें, लेकिन अगर आप एक घर के लेवल पर भी देखें तो उसमें भी जो चार लोग हैं उन्हों की जो स्थिति है, मन की स्थिति है, द वे दे टॉक, द वे दे बिहेव, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ द होम। और इसलिए आप हर घर में जाएं तो आपको जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो बहुत अलग मिलती है। कभी कभी घर में जाकर के यू शुड जस्ट फील द वाइब्रेशन ऑफ द हाउस। आप देखेंगे हर घर का वाइब्रेशन अलग होता है। जहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम है, ईगो कम है,
3: अच्छा,
4: मिल करके रहते हैं,
3: कॉन्फ्लिक्ट
4: बहुत ज्यादा नहीं है, वाइब्रेशन में यू विल बी एबल टू पिक अप हैप्पीनेस एंड ईज एंड कंफर्ट एंड कंटेंटमेंट। और जहाँ बहुत एक्सपेक्टेशंस है वहाँ हैवीनेस होगी। हैवीनेस तो होगी ना, एक्सपेक्टेशन आपने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नाउ आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज जहाँ एक्सपेक्टेशंस है वहाँ हर्ट जुड़ा हुआ है। ईच वन हैज टू डिसाइड, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो नेचुरल है, ये तो बहुत नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशंस होना तो बहुत नॉर्मल है। एक्सपेक्टेशंस होना कितना भी नॉर्मल हो, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना आप उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। सो आई एम ओपनिंग अ डोर द मोमेंट आई हैव एन एक्सपेक्टेशन एज स्मॉल एज आपको टाइम पर आना चाहिए। ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें क्या है, एक्सपेक्ट यू टू बी ऑन टाइम, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, यू नेवर नो कल कौन लेट हो जाए। सो कीपिंग एन एक्सपेक्टेशन बट नॉट गेटिंग हर्ट, नॉट बीइंग अटैच्ड टू द आउटकम इज ओके, बट वेदर वी कैन डू दैट और नॉट इज अ बिग क्वेश्चन।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक्सपेक्टेशंस के साथ आने वाले हर्ट से खुद को कैसे बचाएं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, यही एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समय पे आएं, आप अपना काम करें। बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, और ये अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, एक सोसाइटी में रहना है, घर पे भी रहना है, तो कुछ चीजें तो होंगी ही, बिकॉज ये हम कहते हैं कि हम सोशल सेटअप में रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन नहीं होना तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि भाई आप टाइम पे आए, क्योंकि या हम कहीं जा रहे हैं तो सब साथ टाइम पे आएंगे तभी हम जा पाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन तो होगी कहीं ना कहीं कि भाई तुम अपना काम सही से कर लो, सही टाइम पे आ जाओ, जो तुम्हें बोला गया उतना कर लो। आप कह रही हैं एक्सपेक्टेशन ना हो, ये आप नहीं कह रही हैं, लेकिन उससे हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला नहीं कर पाता या हम खुद ही नहीं कर पाते तो उसके कारण काम भी बिगड़ता है, तो फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे?
4: उस पर हम सेकंड लेवल पर जाएंगे, क्योंकि हमारा हमेशा जो पहली चीज आ जाती है ना, काम कराना है
3: जी।
4: और वो काम कराने के चक्कर में कई बार अंदर क्या हो रहा है वो रियलाइज नहीं करते, और इसलिए कभी कभी आप देखिए हम सब बहुत काम कर रहे हैं और बहुत काम करा रहे हैं और बहुत डेवलप्ड हो गए हर जगह पर, बट द ओनली थिंग विच इज इंक्रीजिंग अगर आप सब जगह देखें तो जो सोल पावर है वो कम होती जा रही है। एज अ होल सोसाइटी आप देखिए, वी आर नॉट अ वेरी हैप्पी सोसाइटी। मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, पैनिक अटैक बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है। भाई काम पहले से ज्यादा हो रहा है,
3: डेवलपमेंट भी हो रहा है,
4: डेवलपमेंट हर लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर, मेडिकल लेवल पर। वी हैव नेवर बीन अ मोर कंफर्टेबल सोसाइटी, आई थिंक सो।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक्सपेक्टेशंस टूटने पर सबसे पहले कौन हर्ट होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: नैट वेयर बोल के एक इकोनॉमिस्ट हैं, डेवलपमेंट पे काम करते हैं, वो ये बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि सब कुछ हमारे आसपास डेवलप हो रहा है, हमारी इकोनॉमीज पहले से बेहतर हैं, टेक्नोलॉजी बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, बट अनहैप्पीनेस बढ़ रहा है। और वो कहते हैं इसका मूल कारण ये है क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हम किस लिए अनहैप्पी हैं। और उनका भी ये कॉन्वर्सेशन जो है वो टेडएक्स में कह रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन को लेके ही है, वो इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं, वो तीन मंकीज को लेके आते हैं स्टेज पे और वो कहते हैं कि मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा, और मैंने रिसर्च है मंकीज के साथ भी किया है, अब आपके साथ करता हूँ। और वो कहते हैं कि चलिए पहला सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक ओलंपिक में रेस हो रही है, आप उसमें भाग ले रहे हैं और आप उसमें सेकंड आए, दूसरा ऑप्शन है आप उसमें थर्ड आए, तीसरा ऑप्शन है आप सेकंड लास्ट आए, तो आप किस में ज्यादा खुश होंगे? फर्स्ट का ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ लोगों ने सेकंड पे हाथ उठाए, कुछ लोगों ने थर्ड पे हाथ उठाए और कुछ लोगों ने सेकंड लास्ट पे हाथ उठाए। ज्यादातर लोग जो है रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं कि थर्ड आने में ज्यादा खुश है, कि खुशी जिस किस में ज्यादा मिलेगी, ये सवाल था। मंकीज सब में इक्वल करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये तीन सवाल है तो इक्वल वेटेज देते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारा वो बताते हैं। और वो कहते हैं कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो सिल्वर मेडलिस्ट होता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, उसको दुख ज्यादा होता है, उसको लगता है कि मैं फर्स्ट आ सकता था, मैं नहीं आया, इसीलिए मैं दुखी हूँ। और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है, जो थर्ड होता है, उसको लगता है कि मैं फोर्थ आ सकता था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थर्ड आ गया। अब फर्क देखिए, एक सेकंड है एक थर्ड है, लेकिन थर्ड वाला बहुत खुश है और सेकंड वाला बहुत बहुत नाराज है। हम रियलिटी से नहीं जुड़े हैं, हम आउटकम से जुड़े हुए हैं।
4: एब्सोल्युटली।
3: और जब तक हम आउटकम से जुड़े रहेंगे, हम अपने आप पे ये भार हमेशा रखेंगे। और वो बहुत खूबसूरती से समझाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिसर्च की बात अलग है, लेकिन जब हम आम जिंदगी में आते हैं, हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, आपसे बात हुई, बच्चे से बात हुई, कॉलीग से बात हुई, पापा मम्मी से बात हुई, बचपन से हम सुनते आते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम ये जरूर करोगे, ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट हमारे घर में।
4: कॉमन स्टेटमेंट है, इसलिए हम कहते हैं ना बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। कई बार तो ये भी कहते हैं, हम ह्यूमन है ना।
3: बिल्कुल,
4: इट्स ह्यूमन टू हैव एक्सपेक्टेशंस, बट फिर हम एट द सेम टाइम ये कहते हैं हम हर्ट नहीं होना चाहते। तो आपने जो कहा आउटकम, एक्सपेक्ट किया, लेकिन हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, ये जो चीज हम कई बार समझ नहीं पाते, इवन एज सिंपल एज कमिंग ऑन टाइम, ये भी एक संस्कार है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है, एक हैबिट है। फॉर सम पीपल इट इज वेरी वेरी नेचुरल टू कम बिफोर टाइम, बहुत ही उनके लिए वो चीज इजी होती है। अब ये भी एक अलग, जैसे आप कहें आपके अपब्रिंगिंग से है या पास्ट से है या आप जो पढ़ते हैं उसका इन्फ्लुएंस है। कईयों को ऐसा लगता है अगर हम थोड़ा लेट आते हैं तो हमारी वैल्यू है।
3: फैशनेबली लेट कहते हैं,
4: फैशनेबली लेट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव दैट, अ लॉट ऑफ पीपल फील कि अगर वो लास्ट आते हैं या थोड़ी देर के बाद आते हैं, सो सडनली दे वैल्यूड मोर। देयर सम पीपल हु फील कि दे आर ओनली नोटिस्ड व्हेन दे कम लेट, मतलब उनको तभी अटेंशन मिलता है जब वो मीटिंग में या उसमें सबसे लेट पहुंचते हैं। वो जो अटेंशन है वो नेगेटिव है, बट दे आर ओनली नोटिस्ड व्हेन दे कम लेट,
3: अटेंशन तो मिला।
4: एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट सच सबकॉन्शियस लेवल, उनको भी नहीं पता होता।
3: अच्छा,
4: हमारे जो संस्कार होते हैं ना, हम अपने ही अभी तक नहीं समझ पाते। जैसे आप किसी को कहेंगे कि मैं लेट होना नहीं चाहता, कैसे लेट हो जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता, आई ट्राई वेरी हार्ड, आई पुट एन अलार्म, आई डू एवरीथिंग, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कैसे लेट हो जाता हूँ। कभी कभी कई फैमिलीज में ही हर जगह लेट पहुंचने का एक जैसे
3: रिवाज
4: सा बन जाता है
3: कि 8 बजे की पार्टी है तो 8 बजे तो घर से निकलना चाहिए, 9 बजे से पहले पहुंच के क्या करेंगे, तो
4: पार्टी है, इवेंट है, नॉर्मल सा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से निकला,
3: इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम।
4: तो वो फिर वो चीज किस में चली जाती है, आपके हैबिट में चली जाती है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनको भी नहीं पता होता वो क्यों कर रहे हैं। अब मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, नॉट नोइंग आपकी क्या जर्नी है, आपका क्या डिसिप्लिन है, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, एक्सपेक्ट करना आप कहेंगे नेचुरल है, पर कल को अगर वो नहीं कर पाता और हम हर्ट होते हैं तो अंदर जो डिस्टर्ब हो रहे वो तो मेरे लिए राइट नहीं है ना। हाउ इज इट हेल्पिंग मी, हाउ इज इट हेल्दी फॉर मी। अब आप लेट आए और अंदर मुझे थॉट चल रहा है इनको पड़ी नहीं है, इनको परवाह नहीं है, इनको टाइम की वैल्यू नहीं है, ये थॉट्स किसके मन में चल रहे हैं?
3: हमारे मन में, और
4: एक बार सोच करके देखे हैबिट उनकी
3: दिक्कत हमको हो रही है।
4: काम में जो होगा वो तो सेकेंडरी है, बाद में जाएंगे, लेकिन अभी जस्ट एट द लेवल ऑफ पीस ऑफ माइंड हम कहते शांति चाहिए, शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और वर्क भी अगर आपको करना है, मीटिंग भी करनी है, सो वोंट यू वॉन्ट टू बी स्टेबल बिफोर यू गो फॉर अ मीटिंग? अगर आप अंदर में
3: डिस्टर्ब रहते हैं तो फायदा नहीं,
4: फायदा नहीं है, गलत डिसीजन हो सकता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दूसरों को समझाने से पहले खुद का काम और कंपोज्ड होना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी सिस्टर, ये जो हो सकता है आप बहुत स्टेबल मन के हैं और आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं यार, दो तीन बार लेट आया है, उसकी प्रॉब्लम है, घर पे कुछ चल रहा है, आ जाए। कभी सिस्टर, ये जो हो सकता है आप बहुत स्टेबल मन के हैं और आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं यार, दो तीन बार लेट आया है, उसकी प्रॉब्लम है, घर पे कुछ चल रहा है, आ जाएगा, लेकिन आपके बॉस

0: है ना, एनी काइंड ऑफ यू नो व्हेन यू वांट समबडी टू चेंज, अगर वो राइट वाइब्रेशन से कम्युनिकेट नहीं की जाती तो वो सिर्फ सुन रहे होते हैं पर वो अंदर जैसे धारण ही नहीं हो रहा होता, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता। दो चीजें एक साथ हो रही होती है, एक आपका वाइब्रेशन जा रहा होता है, दूसरी आपकी आवाज जा रही होती है। पहले क्या पहुंच जाता है?
1: वाइब्रेशन।
0: सो यू गॉट डिस्टर्ब्ड, आपके मन में चला इनको वैल्यू नहीं है, ये मानते नहीं है, ये करते नहीं है, ये समझते नहीं है, सबका नुकसान होता है, ये आपने सोच लिया। सो दैट नेगेटिविटी हैज ऑलरेडी रीच्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो पहुंच जाती है, मतलब वो वाइब्रेशन ट्रेवल करता ही है। और वैसे भी जो रिश्ता है, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू टॉक, इट इज मोर अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। अच्छा, अभी आपने सब कुछ बोल लिया लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे से बात करनी है, मुझे बहुत कामली उसको कहना है। सो यू यूज दैट कन्वर्टर कि आप सोचे कुछ और बोले कुछ, वो सब हम कर लेते हैं, हमें आता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव दैट एक्सपर्टीज कि हम सोचते गलत हैं पर बोलते बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्क कल्चर में अभी बहुत ज्यादा है रिस्पेक्टफुली बात करो, आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो हम बहुत कामली उनको बोलते हैं। पर समटाइम्स आपने रियलाइज किया कि बहुत कामली बोलने के बाद भी वो बहुत रिएक्ट करते हैं। और आपको लगता है इतने आराम से तो बोला, इससे ज्यादा आराम से कोई क्या बोलेगा, व्हाई डिड दे रिएक्ट? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी पहुंच चुके थे।
1: तो आप कह रहे हैं पहले मन को अपने शांत करो, फर्म रहो, फिर आप बात करो, तो शायद वो उसका
0: फर्म रहने में कोई हर्जा नहीं है। फर्म भी रहो,
1: डिस्टर्ब मत हो, अंदर
0: अथॉरिटी से भी बोलो। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड बीइंग असर्टिव?
1: एंगर में आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, असर्टिव में आप शांत हैं लेकिन आप अपनी बात जो है मजबूती से कह पा रहे हैं।
0: थोड़ा हमें, हम सबको अपने जीवन में कंपैशन लाने की जरूरत है, इज व्हाट आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली एट दिस पॉइंट। रियली जितना मैं लोगों से बहुत नजदीक से मिलती हूँ, आई फील दे वेरी ब्रोकन इनसाइड।
1: ऑल
0: ऑफ अस आर वेरी ब्रोकन।
1: सही कह रही
0: हैं, बाहर कुछ ड्रामेटिक नहीं हो रहा होता लेकिन अंदर ही अंदर। लेटली आई मेट अ मदर, उनके दो बच्चे हैं, एक को ऑटिज्म है, दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है। नाउ समटाइम्स यू फील जो नॉर्मल वाला है वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन व्हेन आई मेट क्लोजली जो नॉर्मल है, ही कम्स अक्रॉस नॉर्मल बट इज टोटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। अभी आप कहेंगे कि ऐसे कैसे बेचारा, हमें बेचारा वो लग रहा है ना, लेकिन अगर आप बहुत क्लोजली देखें तो वो बेचारा लगने लगा, क्योंकि अगर एक आपके घर में स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है तो सारा अटेंशन किस पर चला जाता है, तो जो दूसरा वाला बच्चा है वो कई बार निग्लेक्ट हो जाता है, निग्लेक्ट भी हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन
1: उसी पे पड़ता है,
0: उससे होती है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग।
1: सही कह रही हैं।
0: तो इसको, सिबलिंग को भी कुछ हो रहा है, समझो खेलने गए, इसको चोट लग गई, स्कूल में गए, ध्यान नहीं दिया या व्हाटएवर,
1: तो
0: भी ब्लेम उसके ऊपर आ रहा है। सो देयर इज सो मच प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस चाइल्ड। नाउ दिस चाइल्ड व्हेन ही गोज टू ऑफिस और ही गोज टू स्कूल कम्स अक्रॉस वेरी वेरी नॉर्मल, हमेशा एक स्माइल है चेहरे के ऊपर, पढ़ भी रहा है, काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें देखकर लगता है क्या है। लाइक आई सेड, यू नो पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच। अब ऐसी ये चीजें जो हैं इतनी सटल हैं, इतनी हिडन हैं, बट आई फील कि ऑल ऑफ अस जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वेदर वर्क प्लेस पर लीडरशिप है, घर में है, स्कूल में एक टीचर है, बी अ लिटिल बिट मोर कंपैशनेट एंड काइंड। आप समझने की कोशिश करो, हम लोग क्या करते हैं, वे हियरिंग पीपल, वे नॉट लिसनिंग, वे रियली नॉट लिसनिंग टू पीपल एंड वे नॉट एबल टू सी देयर पेन एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई लेट आ रहा है आप चला लो, मेरा वो भाव नहीं है।
1: सही कह रही हैं।
0: भाव ये है कि आप डिस्टर्ब होने की जगह आप थोड़ा सा अपने मन में अपने से बात करो, वी नीड टू टॉक टू आवर सेल्फ, कुछ होगा। बिफोर रिएक्टिंग लेट मी सिट विद दैट पर्सन फॉर लंच, उसको पूछें तो सही क्यों आप बार बार लेट हो जाते हो, घर में सब ठीक है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, बात तो करके देखें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम बात करके देखते हैं, सो यू सडनली यू नो वी फील क्यों रिएक्ट किया,
1: होता है कई बार खुद ही सोचते हैं कि यार ये इतनी जोर से बोलने क्या जरूरत,
0: क्या जरूरत,
1: प्यार से भी बोल सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: और फिर ऐसा नहीं है, आप फर्म रहे, आप असर्टिव रहे, थोड़ा सा टाइम दे उनको बदलने के लिए, थोड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन भी यूज करना है तो कर ले। मन में हर एक के प्रति शुभ भावना रखे, उसमें न हमारा कोई नुकसान है, से हमारी जो शुभ भावना है ना, जिसको हम गुड विश कहते हैं, आई एम नॉट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट समबडी बट आई एम थिंकिंग राइट अबाउट समबडी, दिस इज पावर। इट इज नॉट जस्ट एम्पावरिंग मी, लेकिन वो एक वाइब्रेशन सामने वाले को एम्पावर करता है। एंड जस्ट इमेजिन टू हैव अ मैनेजर और बॉस लाइक दैट, मतलब आप देखो आप कितनी दुआएं कमाएंगे, एक बार सोच करके देखो।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ऑफिस सेटअप में इफेक्टिव फीडबैक देने का सबसे सिंपल और पॉजिटिव तरीका क्या है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरे एक बहुत प्यारे बॉस थे, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी तुमको किसी को फीडबैक देना हो ना, एक तो ऑफिस में मत दो, बाहर ले जाओ उसको, चाहे बालकनी में ले जाओ, और ब्रेक ब्रेड उसको एक चाय पिलाओ या फिर एक बिस्किट खिला दो। और बिस्किट खिला दे रहे तो उनका भाव ये था कि उससे क्या होता है, आप भी इज आउट हो जाते हैं। आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होता, मुझे ये बात बोलनी, आप इज आउट होते हैं, आप सोच रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, उनमें कैमराडरी बढ़ती है। कैमराडरी है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब आप एक साथ ब्रेक ब्रेड करते हैं ना, तो बातचीत जो है वो बहुत हल्के से आराम से होती है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि कभी कभी आप साथ में बैठ के देखो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मंशा क्या है, वो भी आपको समझ में आएगा। शायद इट विल हेल्प यू गिव बेटर फीडबैक
4: ऑल्सो। फाइनली तो हम चेंज चाहते हैं ना।
3: बिल्कुल हाँ, इफेक्टिव होना चाहिए।
4: सिर्फ बोलते रहे
3: फायदा नहीं उसका,
4: वो भी तो फायदा नहीं है। हम सामने वाले में चेंज चाहते हैं
3: जी।
4: सी वर्क तो वो कर रहे हैं, करके दे रहे हैं, बट हम सबको एक साथ इवॉल्व भी तो होना है ना। वी हैव टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। आपको भी इवॉल्व होना है एज अ लीडरशिप रोल पर, आपको होना है, जूनियर है उसको भी होना है। तो अगर हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ धन कमाने का होगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन अगर ये होगा कि धन भी कमाना है पर मुझे भी तो इवॉल्व होना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन, सी दैट मेक्स यू फील वेरी कम्फर्टेबल एंड कंटेंट। कितनी बार ऐसा होगा, यू मे बी वेरी गुड एट योर वर्क, आप बहुत अच्छे होंगे अपने काम में, स्किल्ड होंगे, टैलेंटेड होंगे, आपको कोई निकाल भी नहीं सकता क्योंकि आपके वर्क की वैल्यू है, लेकिन फिर वो कई बार कहते हैं ना कि लास्ट में आप किसके लिए याद किए गए, जस्ट यू वर अ गुड ह्यूमन बींग और यू वर अ जस्ट गुड डॉक्टर और यू नो एनी प्रोफेशन, वो भी बहुत जरूरी है। उसकी भी बहुत वैल्यू है,
3: लेकिन
4: उससे भी बहुत रिगार्ड आता है।
3: अच्छे इंसान को ज्यादा याद रखते हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल।
4: हम सबको बनाए। रिमेम्बर अभी लेटली आई वॉज लिस्निंग टू अ वंडरफुल पॉडकास्ट, दिस लीना नायर आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज द सीईओ ऑफ शनेल नाउ, इंडियन बिजनेस वुमन। आई मे बी लिटल रॉन्ग विद द नेम्स एंड टाइटल्स, आई डोंट नो, बट देन व्हाट शी वाज सेइंग इज कि कंपैशनेट लीडरशिप मिसिंग हो रही है।
3: बिल्कुल सही कह रही है।
4: और वो कहती है कि हम लोगों के साथ काम करते हैं, बिचारे ऑल्सो से रिसोर्सेज नहीं है, बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, मशीन नहीं है, फीलिंग्स है। एंड शी सेज दैट देयर आर अबाउट 37,000 पीपल जिनके साथ वो काम करती है, 20,000 के नाम उनको याद है।
3: वाह क्या बात है।
4: एंड शी मेक्स इट अ पॉइंट टू स्टॉप किसी से बात करना, किसी से 2 मिनट चैट करना। शी सेड माय पर्पस इज नॉट ओनली कि कंपनी ग्रोथ होनी चाहिए, व्यक्ति का भी तो ग्रोथ होना चाहिए ना।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: जोशी, इट्स हॉट।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुँच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: काम में मीनिंग और पर्पस होने से परफॉर्मेंस और पीस दोनों कैसे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक और बहुत अच्छे कॉलिग थे मेरे, वो कहते हैं मैं इंटरव्यू में बहुत बार सवाल पूछता हूँ, कोई आता है सामने तो कहता है भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मान लीजिए सामने वाले ने कहा कि भाई 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे पूछते हैं इज दैट 15x1 और 1x15, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। तो कहते हैं आपने एक ही काम 15 साल किया है या 15 साल में हर साल आपने अलग अलग काम किया है, वो बहुत जरूरी है। और उससे मैंने बहुत बड़ी सीख ली कि हर साल अगर आप कुछ नया कर सकें तो आप खुद भी इवॉल्व होते हैं, खुशी आपको खुद मिल जाती है। क्योंकि कई बार हम खुशी जो है वो बाहर खोज रहे होते हैं कि कंपनी में कुछ ग्रोथ होगी या, बट अगर आप खुद ही, जैसे आपने गिटार सीख लिया,
4: उसमें भी फर्क है। एक है करना, कुछ नया करना और बनना।
3: अच्छा,
4: एक है सी वी नॉट ह्यूमन डूइंग,
3: ह्यूमन बीइंग,
4: वी आर ह्यूमन बीइंग। कुछ नया करना वो अलग चीज है, हमने गिटार सीखा, हमने कुछ सीखा, दैट आल्सो कीप्स अस इवॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स, वो एक अलग ग्रोथ है। एक ग्रोथ है आपके टैलेंट में, आपके स्किल में आप इवॉल्व हो रहे हैं, वंडरफुल,
3: छोटे बच्चे के अंदर।
4: एक है आप ग्रो हो रहे हैं
3: जी,
4: एज अ पर्सन एज अ सोल आप ग्रो हो रहे हैं, वो ग्रोथ अलग है। Where she said, you know, जो उन्होंने कहा हर व्यक्ति को जब वो काम करें so they should feel some meaning and purpose in their work. आजकल हम क्या कहते हैं, ये 6 घंटे नहीं करना चाहते, 8 घंटे नहीं करना चाहते, क्यों? Are they finding that meaning and purpose in their work? उनको लग रहा है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो चीज जब उनको रियलाइज होगी आपको कहना नहीं पड़ेगा काम करो, वो खुद करेंगे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: नो
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: आपके मन की स्थिति आपके आउटकम को कैसे इम्पैक्ट करती है, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: मैं कल एक जगह खाने गया था, छोटा सा कैफे था। ये दो तीन कैफे मैं हमेशा विजिट करता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ, तो मैं वहाँ गया और मैंने उसे कॉफी मांगी, और मैं हमेशा बातचीत करता हूँ कोई भी हो, तो जो कॉफी दे रहा था मुझे, मैंने कहा कैसे चल रहा है भाई, सब ठीक है? बोलता बहुत मजे में हूँ। और ऐसा रिएक्शन मुझे बहुत कम मिलता है, नॉर्मली होता है कट रही है, सब है ठीक है सर, चल रही है सर, बोलता बहुत अच्छे में। मैंने कहा अच्छा क्या बात है, ऐसा क्या है? बोलता जो अच्छी जगह है। मैंने कहा नए नए आए हो? बोलता नहीं सर, अभी समय हो गया मुझे, दो तीन साल हो गए। मैंने कहा तो इसी जगह में मजा आ रहा है, मतलब सैलरी बहुत अच्छी है? इससे अच्छा सैलरी तो जो कॉमन है वही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये खुशी होने का राज क्या है? तो कहता है ये जो मैनेजर है वो अच्छा है, जब भी है आके पूछता मुझे सब ठीक है, मैं क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता हूँ, इज देयर समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। तो सिर्फ उनका ये पूछना ही मेरे लिए काफी है, वो कुछ करे नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इस बात से इतनी सीख मिली, इतनी खुशी मिली। और वो जब सर्व भी कर रहा था, वो जब आया ना कॉफी लेके मेरे टेबल, बोलता है सर दीजिए, बहुत खुश था। तो ऐसे लोगों से मुलाकात कम होती है, तो मुझे लगा वो इवॉल्व्ड था कहीं ना कहीं, मुझसे शायद कहीं ज्यादा इवॉल्व्ड। बहुत अच्छा लगा ऐसे मिलके। तो
5: इवन कितना सिंपल था कॉफी देना, बट दैट एक्शन आल्सो टच्ड यू, क्योंकि एक बार परमात्मा ने भी बहुत सुंदर बात कही थी कि ये नहीं है आप क्या करते हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट हाउ यू डू। माना आपका साधारण कर्म भी अगर महान स्थिति में किया जाता है,
4: अच्छा,
5: तो वो भी औरों को कुछ अनुभव कराने के निमित्त बन जाता है।
4: क्या ब्यूटीफुल बात कही।
5: इवन एन ऑर्डिनरी टास्क डन इन एन वेरी एलिवेटेड स्टेज कैन गिव समबडी अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
4: ये बहुत अच्छी बात कही, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है आज की देर, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत परेशान हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में। तो कोई साधारण काम भी अगर आप महानता से करें,
5: महान स्थिति, आपकी स्थिति जैसे आपने कहा वो बहुत खुश था, वो कंटेंट था, वो सेटिस्फाइड था, तो कॉफी के साथ वो एक एनर्जी लेकर आया था।
4: बिल्कुल।
5: तो कॉफी तो आपने कई जगह पी है, आप रोज पीते हैं, पर जो आपको याद है वो एनर्जी, you will go back there not for the coffee
4: Bilkul.
5: but to meet that person and have that little conversation. Sometimes kya hota hai, very ordinary somebody can make a very big difference in our life.
4: Bilkul. aur aisa hi hua, in fact usne kaha sir aap chai piyo, aur main chai bhakt hu, mujhe coffee itni pasand nahi hai, coffee to aise pi raha tha, sir yahan ki chai bahut achhi hai. maine kaha chal tumhare naam pe chai pi lete hain. to ye choti moti baatein hain, aur aap sahi keh rahi hain, wo bahut aam ek act kar raha tha, मेरे लिए वो सिर्फ चाय ला रहा था, बट जो कॉन्वर्सेशन उसने की, जिस खुशी से की, उससे बहुत फर्क पड़ा।
5: आपने कितनी सुंदर बात की, मैनेजर ने उसको पूछा आप ठीक हो?
4: हाँ।
5: नॉर्मली मैनेजर पूछता है काम ठीक है?
4: हाँ, काम सब सही हो रहा है कि नहीं?
5: काम सब ठीक है, यू मोर वरिड अबाउट वर्क एंड योर सी वर्क एंड प्रॉफिट इज द बाय प्रोडक्ट। आई ऑलवेज से दैट, बट पीपल यू नो समटाइम्स दे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो कहते हैं नहीं, वर्क पर रिलेशनशिप नहीं बनानी, वर्क को अलग रखना है, रिलेशनशिप को अलग रखना है, अपना काम करो, काम से काम मतलब करो और निकलो। नाउ दैट इज बिकॉज दे हैव हैड सम बिटर एक्सपीरियंस। लेकिन नॉर्मली अगर आप छोटी टीम भी है, 5-10 की टीम भी है, पर आप एक फैमिली की तरह रहते हैं, आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, बिकॉज एवरीबडी वुड वॉन्ट टू वर्क, दे डोंट हैव टू वर्क।
1: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: watching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
1: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
0: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
1: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
0: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
3: एब्सोल्युटली नॉट, उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
2: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है
3: स्पिरिचुअलिटी। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
2: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है, है ना? लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
2: अच्छा।
3: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
2: अच्छा।
3: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years शी सेड वी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर्स इंदौर में, मुंबई में, एवरीवेयर, न्यूरोसर्जन, सब कुछ, पर डायग्नोस ही नहीं हुआ। 4 years के बाद वो एकदम खत्म हो गया।
2: अच्छा।
3: क्या बीमारी थी पता नहीं। देन शी कुड गो बैक टू कॉलेज। अभी वो भी अपनी मेडिसिन कर रही है। पर शी सेड वो 4 years का जो पीरियड था इतना चैलेंजिंग, अगर मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होती, स्टेबल नहीं होती, तो कभी भी हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय पर उसको होम स्कूल करना, ट्रीटमेंट देना, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेख भी नहीं पड़ेगा। माने इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना आपका, योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
2: बहुत खूबसूरत।
3: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन,
2: वेरी नाइस,
3: आप उस समय पर हैं। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
2: उसका
3: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू।
0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कह दूं तुम्हें
5: हाँ
4: या चुप रहूं
5: ना
4: दिल में मेरे आज क्या है
5: क्या है

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, दिस इज योर होस्ट मिर्ची मॉर्निंग्स, शो का नाम है। यहाँ पर मैं बोले तो प्रिसिला आती हूँ तुम्हारी मॉर्निंग्स को बोरिंग से सोरिंग बना देने के लिए। अब देखो यार, देसी लाइफ अब्रॉड बहुत ही कमाल की चीज होती है। रात को सोच के सोते हो कि कल से हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, लेकिन सुबह उठते ही बेगल, चाय और लेफ्ट ओवर गुलाब जामुन का इमोशनल सपोर्ट जो मिल जाता है। अब घर से इतना दूर हो, घर वालों से इतना दूर हो, तो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन गुलाब जामुन से ज्यादा तो मुझ पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ प्योर बैलेंस ऑफ गॉसिप, गपशप, न्यूज अपडेट, म्यूजिक, मस्ती एंड मिर्ची एंड मच मोर। और इस मच मोर में मैं भी आती हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे फटाफट से फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। सोच के रहो, फॉलो करो मुझे जल्दी से। एंड फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci. Iskaba la puskabana sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन में भिजवाओ यार। कोई
1: कहाँ भिजवाना
2: है मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है? जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा,
1: क्या मजाक कर रहा है?
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है,
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
8: Chamakte Sitare 2026.
7: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरु।
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाए उससे पहले हम जल्दी से टाइम ट्रैवलिंग करके आ जाते हैं। सबसे पहले है 1792 में केंटकी ऑफिशियली अमेरिका का 15th स्टेट बना, और फिर 1794 में ब्रिटेन और फ्रांस ने समुन्दर में ऐसी नेवल बैटल की जिसका नाम ही था ग्लोरियस 1st of June। मतलब इवन बैटल्स बैक देन हैड बेटर ब्रांडिंग देन सम स्टार्टअप्स। 1812 में US प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन ने कांग्रेस से कहा था लेट्स टॉक वॉर, और शुरू हुआ वॉर ऑफ 1812। फास्ट फॉरवर्ड टू 1831, एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस ने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल डिस्कवर किया था, बेसिकली हमारे आज के जीपीएस का ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। 1950 में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे एस्टैब्लिश हुआ, और ऑनेस्टली हम सब देसीज तो आज भी अपनी मम्मी के सामने बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं, चाहे तुम्हारी एज 55 हो या 15 हो। स्वेटर पहन लो इज अ फॉरएवर मम्मा डायलॉग। 1974 में हाइमलिक मैनूवर पब्लिश हुआ, द टेक्निक दैट हेल्प्स समवन हू इज चोकिंग। देसी वर्जन इसका है दादी माँ के छित्तर। 1980 में CNN लॉन्च हुआ था, दुनिया का पहला 24-आवर न्यूज नेटवर्क, और तब से न्यूज का कोई स्नूज बटन नहीं आया है। आज के दिन के कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स भी याद कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984 एंड द ट्रेजिक नेपोलीज रॉयल मैसेकर इन 2001। और आज सेलिब्रेट हो रहा है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो दूध भी पी लेना और पेरेंट्स को कॉल भी कर लेना याद से। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे याद रखने के लिए मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: एक्टर बॉबी देओल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली ओपन अप किया है अबाउट अ टफ चैप्टर इन हिज करियर। ही रिवील्ड दैट ही वाज ओरिजिनली होपिंग टू बी अ पार्ट ऑफ जब वी मेट दैट इवेंचुअली स्टार्ड शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। बॉबी सेड ही वाज गोइंग थ्रू अ रफ फेज प्रोफेशनली एंड नीडेड अ फिल्म लाइक दैट बैक देन। व्हेन इट डिडंट हैपन ही एडमिट्स ही वाज हार्टब्रोकन, क्योंकि ये रिजेक्शन उन्हें काफी दिल पर लगा था। उसकी वजह से ही बिकेम अ बेटर एक्टर एंड अ बेटर पर्सन। And honestly, isn't that the most Bollywood thing ever? इंटरवेल तक सब कुछ उल्टा पुल्टा होता रहा है, फिर सेकेंड हाफ में कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सो इफ समथिंग डजंट वर्क आउट फॉर यू और डिडंट वर्क आउट फॉर यू अभी तक, तो मे बी लाइफ इजंट सेइंग नो, मे बी लाइफ इज सेइंग पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मे बी लाइफ इज सेइंग पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे इमेजिन इफ एवरी रोल वॉज एग्जैक्टली एज प्लान्ड, तो बॉलीवुड का गॉसिप कहाँ से आता। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे फटाफट से फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट इज 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
5: Chamakte Sitare 2026.
4: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab... मिर्ची का
8: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग स्वीटी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वेदर चेक का टाइम आज का है, तो राइट नाउ इट्स अराउंड 60 डिग्रीज फारेनहाइट, पार्टली क्लाउडी है, लेकिन विंड जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामा ऐड कर रही है। सो ऑल्दो द थर्मामीटर सेज 60, इट्स एक्चुअली फीलिंग लाइक 56 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड गुड न्यूज ये है दैट देर इज गोइंग टू बी नो रेन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, जस्ट लाइक द लास्ट 24 आवर्स। तो नेचर का ये ऑफिशियल तरीका है कहने का कि सरप्राइज वाटरवर्क्स आज के लिए कैंसिल हो चुके हैं। एंड एज द मॉर्निंग रोल्स ऑन, स्काईज आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर अप। सुबह के 5 बजे से क्लैरिटी आनी शुरू हो गई थी, अभी तक वो क्लैरिटी बरकरार है। और अब टेम्परेचर का रेंज देख लेते हैं, इट्स गोना बी रेंजिंग फ्रॉम 55 डिग्रीज टू अ कंफर्टेबल 74 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील होगा 53 से लेकर 72 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। एंड हियर्स द फन कंपैरिजन, आज का हाई जो है इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज यस्टरडेज हाई। कल तो 77 डिग्रीज फारेनहाइट और आज टच करेगा 74 डिग्रीज फारेनहाइट तक। तो भाई साहब कर क्या रहे हो, लेयर के प्लेयर बनो, साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, और बाहर निकलोगे तो SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अभी लगाए रखो मिर्ची, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हो, इंस्टा और एक्स पर भी तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे यू, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब बारी आ चुकी है
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले इंडियन केसर मैंगोज हैव बीन स्पॉटेड एट द कॉस्को इन न्यू जर्सी एंड दे सीज आर रिएक्टिंग एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। लाइक समवन जिनको फ्री वाईफाई एंड अनलिमिटेड चाय मिल चुकी है। अप्रोक्सीमेटली $20 अ बॉक्स में बिक रहे हैं। द वीडियोज हैव गॉन वायरल प्रूविंग वन थिंग, यू कैन टेक देसीज आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक द मैंगो ऑब्सेशन आउट ऑफ देसीज। नंबर टू पर गूगल इज रिपोर्टेडली सीकिंग अप्रूवल टू रिलीज मिलियंस ऑफ स्पेशली बैक्टीरिया इन्फेक्टेड मेल मस्कीटोज इन पार्ट of the US and the goal is to help reduce mosquito borne diseases like dengue and zika. Basically mosquitoes are now being hired to fight mosquitoes. And number three per RCB fans, are you okay? Because you are smiling way too much. After RCB's second consecutive IPL title win, Anushka Sharma shared a picture of Virat Kohli rocking a t-shirt that said, "One felt nice, we did it twice." Pretty smooth, I must say. Confident hai and probably impossible for rival fans to read without emotional damage. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. सुनते रहो मुझे और जाकर मुझे फॉलो भी करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता. अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है.
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज फोन करना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ,
3: मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
8: Chamakte Sitare 2026.
7: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
9: Inefficient.
10: Very complex.
11: Clumsy.
12: Confusion.
9: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: नमस्ते इस्लाम एंड सत श्री अकाल भाई और बहनों. आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12, ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन. विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड.
14: June 2nd, 2026. अर्ली वोटिंग डेट्स मई 26 टू मई 31st. सुजीत सिंह इज द चेंज वी नीड.
13: वेट फॉर बाय सुजीत सिंह फॉर कांग्रेस.
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab, mirchi kha.
4: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, एंड यू आर हैंगिंग आउट विथ मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग। और आज की एंटरटेनमेंट अपडेट में वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग। ग्लोबल पॉप सेंसेशन डुआ लिपा हैज ऑफिशियली टाइड द नॉट विद ब्रिटिश एक्टर कैलम टर्नर इन एन इंटीमेट सेरेमनी इन लंदन, सराउंडेड बाय क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड कैन वी जस्ट अप्रिशिएट द फैशन मोमेंट? डुआ लुक्ड स्टनिंग इन क्लासिक वाइट, व्हाइल कैलम केप्ट इट शार्प इन अ नेवी सूट। मीनवाइल समवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ फैंस आर प्रिटेंडिंग दे आर टोटली फाइन, completely fine, absolutely fine, adds sad playlist to queue. But hey, love stories are meant to be celebrated, and we are sending the happy couple lots of good wishes as they start this new chapter together. And speaking of new chapters, RK Jewels de rahe tumhe real diamond jewelry at real prices. Zero labor charges hai, zero extra charges hai. You're paying only for the true value of gold and diamond, because honestly, the only thing that should be extra is your confidence after wearing the jewelry. Jewelry khareedne ka plan hai to RK Jewels par jana banta hai. Filhal, mirchi dar bangers yahan par aane wale hai tumhare liye. Main hu Priscilla, tumhare saath mein, of course, Insta aur X par bhi main available hu. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे दैट इज जून 1st, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। केक खाओ, कैलोरीज को म्यूट कर दो, भूल जाओ। और आज के दिन किस ग्रुप के साथ तुम एसोसिएटेड हो बता देती हूँ कि सबसे पहले द लेजेंडरी एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन, इनकी आवाज में ना ग्रोसरी लिस्ट भी पड़ी जाए तो वो भी ऑस्कर वर्दी हो जाएगी। ऑल्सो ब्लोइंग आउट कैंडल्स टुडे इज माधवन, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव एक्टर्स। And then we have Heidi Klum, supermodel extraordinaire, and Amy Schumer, proving ki June 1st babies jo hote hain wo stylish ke saath saath funny bhi hote hain. Music lovers, we've got rock legend Ron Wood and Grammy winning singer songwriter Brandy Carlile. And if that wasn't enough, iconic Hollywood legend Marilyn Monroe was also born today. So basically, अगर आज के दिन तुम भी इस धरती पर आए हो तो योर बर्थडे क्रू इंक्लूड्स एक्टर्स, कमेडियंस, म्यूजिशियंस, मॉडल्स एंड ग्लोबल आइकॉन्स। तो आज तुम सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो, गुपचुप अकेले पार्टी मना रहे हो, जो भी कर रहे हो बर्थडे शाउटआउट्स के लिए मुझे कॉन्टेक्ट करो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। यू कैन सेंड मी योर बर्थडे पार्टी इनवाइट्स एज वेल एज शाउटआउट्स, और साथ साथ में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
7: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
6: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्टनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time for सोना एंड चांदी का रेट अपडेट only on मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,700 पर ट्राउंस, $4,700 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। राज ज्वेल्स की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दें। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची तक गानों की बारी है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

good, good, good, good, good, good, oi, good, good, good, good, good, oh, आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप ओए कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time for मिर्ची आवर का 3 on मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची आवर का 3।
1: सबसे पहले इमेजिन सेटलिंग इन फॉर अ फ्लाइट टू स्पेन एंड सडनली प्लॉट ट्विस्ट। अ यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट हैड टू टर्न बैक आफ्टर द वर्ड BOMB अपीयर्ड ऑन अ ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट ऑन बोर्ड। आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन इट टर्न्ड आउट अ 16-year-old हैड नेम्ड हिज स्मार्ट वॉच BOMB। बेटे को अटेंशन चाहिए था, इंस्टेड ही गॉट एन एविएशन लेवल का टाइम आउट। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, नेम योर डिवाइसेस वाइजली। नंबर 2 पर डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन हैज स्पार्क्ड कन्वर्सेशन by saying that if she had young children today, she'd rather they smoke than use social media unsupervised. Her point wasn't about smoking being okay. It was about how concerned she is regarding the impact of social media on kids. Basically, she's saying screen time needs a little more supervision. And number 3 per filmmaker Shekhar Kapoor says if teenager cricket sensation Web of Suryavanshi wasn't such an incredible cricketer, he would have cast him in his upcoming reboot of Masoom. And that's your Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Mujhe follow karo Insta aur X pe, mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp pe mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Rambala.
0: Burga, burga. La vida es para la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: Good morning.
3: Sir, may I actually ask sir about the request karna chahta hu. Sir, aap suna hai wo singing winging sikhate hai sir. To sir, gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na wo sir thode different hote hain.
2: कैसे बोल सकता
3: हूँ
2: जब तक आपको सुनाएंगे नहीं।
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
2: सर कुछ गा के सुनाएगा।
3: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है।
2: अरे एक काम करो अपने गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया ना कोंडा में यही फायदे मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा
2: सुन ले बात मेरी बात सुन पहले बात
3: हाँ सर
2: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर बोलिए।
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम बैक टू राशि जोन नंबर टू, जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं स्टार्स के बारे में।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: Libra यानी तुला राशि, वर्क मोड एक्टिवेटेड, अ चैलेंज नीड्स योर अटेंशन एंड योर शार्प माइंड इज रेडी फॉर बैटल। टुडेज वाइब इज सीईओ एनर्जी विदाउट द बोर्ड मीटिंग। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, Big dreams, excellent. The stars are practically handing you a green light. Stop overthinking and start doing. Your future self is cheering already. Lucky color is emerald green. Lucky number is 31. Sagittarius and Dhanu Rashi, adventure is fun, but don't turn a simple task into Mission Impossible. Take calculated risks today, not dramatic ones. Tom Cruise already has that job. Lucky color is sunset coral. Lucky number is 6. Capricorn yani Makar Rashi, a conversation you've been avoiding needs to happen. Open up. Honest communication could solve more than months of silent over analysis. Lucky color is midnight blue. Lucky number is 22. Aquarius yani Kumbh Rashi, people may think your new idea is crazy. Good. Most great ideas sound weird before they sound brilliant. Trust your originality. Lucky color is electric violet. Lucky number is 35. Pisces yani Meen Rashi, creative magic is flowing today, whether it's art, content, music, business or your secret passion project. Give it your all. The spotlight may be closer than you think. Lucky color is aqua pearl. Lucky number is 9. And there you go, Rashi zone number 2 is done. Mirchi mornings par main hu Priscilla, tumhare साथ में। मेरा हैंडल नेम इंस्टा और एक्सपर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
7: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
6: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Irchin Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप टाइम एंड हियर्स वन लास्ट गॉसिप फॉर टुडे. टाइगर श्रॉफ सिस्टर कृष्णा श्रॉफ रिसेंटली रिवील्ड दैट टाइगर इज सो डिसिप्लिन्ड इट्स ऑलमोस्ट सुपर हीरो लेवल. अपेरेंटली इवन ऑन हिज बर्थडे ही विल स्मेल द केक, अप्रिशिएट द केक, एडमायर द केक एंड वॉन्ट द केक बट नॉट ईट द केक. आउच. कृष्णा ने जोकिंगली कहा है कि वो साइकोटिक है. ऑनेस्टली टाइगर एंड आई क्लियरली बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज बिकॉज इफ आई स्मेल द केक आई एम ऑलरेडी मेंटली ऑन माय सेकंड स्लाइस. सो इमेजिन हैविंग दैट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल. बट हे, तुम्हारी जो भी चॉइस होगी ना उसको एडमायर करो और डेडिकेशन पूरा वहीं पर दो, वरना ना तुम खुश होगे ना तुम्हारी चॉइस. सो वेदर इट्स फिटनेस गोल्स, वर्क गोल्स या पार्टनरशिप गोल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम 3 weeks अगो आर नॉट कंसिस्ट. And just like that, another fun morning has come to an end for now. मिलूंगी तुम्हें कल, same time, same place, same frequency. मेरा नाम है प्रिसिला. सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स. अभी बैंगर्स आने वाले मिर्चीदार. Stay tuned and stay hot.

0: टाइम में दिस टाइम यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ माई लाइफ.
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड वेल, ये टाइम बचपन में गर्मियों की छुट्टियों का टाइम हुआ करता था यार. और हम इस टाइम में ना बचपन में नानी के घर पर ऐश किया करते थे. एंड यू नो, आई रियलाइज दिस कि मुझे पिछले साल तक भी गर्मियां बहुत पसंद थी. एंड देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि ऐसा क्यों, कि गर्मियों में आम के अलावा ऐसा क्या खास है कि वन वुड लव दिस मौसम. और जवाब में अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि ये वो मौसम है जब हम गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय किया करते थे. और तब से लेकर आज तक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया, आई स्टिल लाइक समर्स अंटिल 2023, जब मेरी ओपिनियन बदली और मैं अपने आप से ये कह सकती हूँ कि अब मुझे सर्दियां ज्यादा पसंद है. चॉइसेस बदली हैं, तो साथ ही साथ छुट्टियां भी तो बदली हैं यार. बिकॉज बड़े होने के साइड इफेक्ट्स के साथ अब गर्मियों की छुट्टियां ऑफिस जैसी जगह पर नहीं मिलती, और एक डेढ़ महीने की छुट्टियां तो डेफिनेटली एक साथ नहीं मिलती यार. तो आज क्या बोलते हो, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गर्मियों की छुट्टियों में पार्क करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
1: हाँ जी बोलो
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
1: हाँ जी देते
2: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाओ यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
1: कहाँ भिजवाना
2: है मैं आपको बता दूँ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाता है
1: जी उठवा लेंगे उतना ही हम
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
1: किसको जी
2: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
1: क्या गिर गया
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
1: भाई साहब क्या उठवाना है
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
1: सामान
2: उठवा
1: क्या कर रहा
2: है तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
4: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
5: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिली।
8: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
9: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
8: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: पूरे साल ना मैं जब अपने घर पे रहा करती थी तो मैं बड़ी कॉशियस रहती थी कि ये मेरा तौलिया है, ये मेरा कंघा है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ये सब भूल जाया करती थी मैं।
1: सारा ज़माना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों में ये ट्विस्ट लाइफ में आता था जहां एज अ किड आई यूज्ड टू गो इन माय शेयरिंग एंड केयरिंग जोन, क्योंकि हम इतने सारे कजिन्स एक साथ होते थे कि मेरा चल ही नहीं सकता था बॉस। खाना शेयर करना हो, बेड शेयर करना हो, या चीजें शेयर करनी हो, हम लोग ना सुबह तो एक बार नहाते ही थे, लेकिन एक बार शाम को फिर से नहाते थे और सब एक के बाद एक नहाया करते थे। और शाम को ना मैं ऊपर अपने रूम में जाने से बचने के लिए नीचे आंगन वाले बाथरूम में ही नहा लिया करती थी। और इस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि टॉवल जो है वो मुझे अपने रूम से लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कजन का टॉवल शेयर कर लिया करती थी यार। एंड तब ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता था कि हाइजीन है, ओ ये मेरा टॉवल नहीं है। और इम्यूनिटी के साथ साथ ना यूनिटी भी बढ़ जाया करती थी। एक प्लेट में से एक साथ खाना खाना, सब कुछ एक साथ करना। नो वंडर हम वो जनरेशन है जिन्हें हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन टाइप मूवीज ना बहुत पसंद आती है। Because we could connect with these films really well, है कि नहीं? चलो जी, with this coming up the next track, you stay tuned with me Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.
2: It's 11:30 AM, Mirchi time check.
3: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry की first choice, RK Jewels, best quality, best price.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Namaste, Islam and Shastri Akal Bhaiyo aur Behno. I'm Sujit Singh running for Congress in NJ12, a historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singhforcongress.org and get engaged.
3: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
2: Read for by Sujit Singh for Congress.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: गोला बर्फ याद है आपको?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और कोई इसे चुस्की बुलाता है तो कोई गोला बर्फ। बुलाए हम इसे कुछ भी, लेकिन इसका स्वाद हर जगह सेम है, आइस एंड सिरप। मुझे याद है हम लोग दिन में जब सब बड़े सो जाया करते थे ना, तब एक डिश लेकर मुल्ला जी की दुकान पर जाया करते थे। और मुल्ला जी की दुकान एक छोटी सी दुकान थी, जो दुकान कम और खिड़की ज्यादा लगती थी, जहाँ उनकी बर्फ घिसने वाली लकड़ी की और लोहे की एक मैनुअल मशीन हुआ करती थी, जिस पर वो बर्फ घिसते और फिर हमारे चॉइस के रंग का शरबत उस पर डालकर गोला बर्फ बनाकर हमें दिया करते थे। हाय, आपसे बात करते करते ना ऑरेंज वाला जो गोला बर्फ था ना, उसका स्वाद आ गया। आपका कौन सा फेवरेट कलर था? क्योंकि बचपन में हम फ्लेवर कम और कलर ज्यादा बोला करते थे। Stay tuned with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 PM Mirchi time check.
2: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels, best quality, best price.
3: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
5: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कॉन्टेंट ज्यादा

लेकिन कनेक्शन कम। लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉप 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाएं। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना। नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, 4 स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये, जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। नो लाउड पे ऑफ, नो स्क्रीमिंग हुक, बस माहौल, द एटमॉस्फेयर, वो लेट नाइट लोनलीनेस, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। द राइटिंग इटसेल्फ फील्स टायर्ड इन अ गुड वे, इट्स एग्जॉस्टेड, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल पर्कशन, एम्बिएंट सिंथ्स, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड दैट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। दिस इज प्योरली मूड ओवर मेलेडी, टेक्सचर ओवर ट्रेंड। गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, फ्रॉम बंदर। नंबर 18।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हाय शिवानी
1: हाय
2: हाय शिवानी कंग्रेचुलेशंस मुबारक हो गाड़ी खरीद ली
1: हाँ थैंक यू वेरी मच आप कौन बोल रहे हैं
2: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया अरे ग्रेट मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार
2: ग्रेट माइलेज मुझे बताओगे कितना है
1: ठीक ठाक है 13-14 के करीब पड़ जाता है आप कौन बोल रहे हैं
2: अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में
1: चला रही हूँ काफी दिन हो गए मेरे को पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई थी
2: ओके शिवानी आप मेरा थोड़ा सा मैं वही बता रहा हूँ शिवानी आप मुझे नहीं जानती है अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा
1: आपको लेनी है क्या
2: नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा डॉगी है ना
1: हाँ?
2: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो मैं उनसे बात कर रहा हूँ ज़ोबी शराब मैं बात कर रहा हूँ उनसे अभी कर लेना शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए है इसका हुआ नहीं है नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है इसको करना है आप ले आएंगे वो टायर के पास
1: नहीं अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना खरीद नहीं सकता मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार इसका ये कब से रोके हुए वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी
1: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले
2: ये सिर्फ 3 अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी एक टायर पे करेगा
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी
1: हेलो
2: आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा अच्छा मेरी बात
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं खुद ही कुत्तों जैसे ना आपने कुत्ते का इलाज
2: अच्छा अच्छा अच्छा शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज फोन करना शिवानी मेरी बात सुनो
1: नहीं
2: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मेरी बात सुन लो प्लीज अतुल ने मुझे नंबर दिया था ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारा मुर्गा बन गया है कंग्रेचुलेशन तुमने नई गाड़ी ली है यार ज़ोबी शराब वो गाड़ी ला रही है टायर पे कर लेना
1: कुकड़ू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
9: Number 10.

मामाशुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2. शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड. कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही हैं एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है. लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है. अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है.

और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ। हाँ, उनका पास थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे। एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike माशूका, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is Hafte. Main aur Tu by Jasmine Sandlars from Dhurandhar, The Revenge. Number 8.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर, हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आए हैं, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: It's 12:30 PM मिर्ची टाइम चेक
2: Brought to you by आरके Jewels. आरके Jewels ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके Jewels. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है इमोशन है क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर एंड यार क्या लेगेसी है इनकी हीरो नंबर वन कूली नंबर वन राजा बाबू पार्टनर बीवी नंबर वन मुझसे शादी करोगी हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म है ये All directed by David Dhawan. लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो हॉलीडेज पे जाओ लाइफ एंजॉय करो लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म में वो वार्म्थ वो मिडिल क्लास मैडनेस वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है
1: See, Papa, what we want as children, if I can tell you, you know, people, yeah, or any child wants yeah. is that if you have, आपने पैसा कमाया है नाम कमाया शोहरत कमाया तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा आई कीप टेलिंग देम ना रिलैक्स आपको हॉलीडे जाना है फर्स्ट क्लास की टिकट कर आपको जहां जाना है मैं भेजने के लिए तैयार आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो
1: इनको अंडा पाव ही खाना है इनको वही
2: मैं बड़ा ही वही हुआ मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए पर वो मजा अलग ही था ना एंड अ स्ट्रगल एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल ये बोलते कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है डूड व्हाट अ लाइन डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत नंबर वन

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: Only on Mirchi. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

नरगिस जी बस 6-7 साल की थी जब उन्होंने मिड 30s में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, ये वो सैड स्टोरी नहीं है कि फैमिली ने फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से छोटी सी बच्ची से फिल्मों में काम करवाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट नरगिस जी की फैमिली, जिसमें मेनली उनकी मम्मा थी, दे वर क्वाइट वेल टू डू। उनकी मदर जद्दन बाई जी एक क्लासिकल सिंगर थी और एक म्यूजिक कंपोजर भी। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट कला से भरे माहौल में नरगिस जी पली बड़ी, उनको फिल्म ऑफर्स भी आने शुरू हो गए। उन्होंने कुछ 6-7 फिल्मों में एज चाइल्ड एक्टर काम किया होगा, जिसमें कहीं उन्हें बेबी नरगिस, कहीं बेबी रानी नाम से क्रेडिट दिया गया। इनफैक्ट उनकी फर्स्ट फिल्म एज लीड एक्ट्रेस भी उन्होंने तब की व्हेन शी वाज जस्ट 14। 1943 में ये फिल्म आई थी तकदीर, जिसमें उनके एक्टर थे मोतीलाल जी। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, आप कभी देखना। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सुंदर सा गाना सुनेंगे, पिक्चराइज्ड ऑन नरगिस जी, आवारा फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कोंडा में कौन से गाने?
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा?
3: सुन ले बात,
4: मेरी बात
3: सुन, पहले बात सुन।
4: हाँ सर।
3: और बंद करिए, बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा है।
4: सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Beat ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Listener mein back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

40s और 50s में नरगिस जी ने ये जो सारे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाले किरदार निभाए हैं ना, इन्होंने काफी नेचुरली निभा लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, जिसकी एक वजह शायद ये भी थी कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही थी, बोल्ड, फेयरलेस, फाइस्टी। वो अपने जितनी भी मीटिंग्स होती थी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ वो खुद करती थी, अपने करियर के डिसीजंस वो खुद लेती थी, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं था जो उनके करियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और इसका क्रेडिट जाता है नरगिस जी की मदर जद्दन बाई जी को, जो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, और उसी तरह की परवरिश उन्होंने नरगिस जी को भी दी। आपको पता है नरगिस जी एक बहुत ही बढ़िया स्विमर थी, इनफैक्ट वो उन पहली मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने स्क्रीन पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना 1951 की आवारा फिल्म में। उन्हें क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था, अच्छा साड़ियां पहनने का भी बहुत शौक था, वो भी लाइट कलर की साड़ियां। ज्यादातर लड़कियों को एक और जो शौक होता है रोड साइड पे गोलगप्पे खाने का, वो भी उनको था। वैसे तो नरगिस जी की बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेज रही हैं कई फिल्मों में, लेकिन अगर आपने चोरी चोरी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फिलहाल उसी फिल्म का एक गाना यहाँ पर हम सुनेंगे, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: एक अच्छी खासी हंसती खेलती गाती सही जिंदगी को तबाह करने में क्या लगता है, एक गलत रिलेशनशिप? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वे मिड थर्टीज में एज चाइल्ड एक्टर नरगिस जी ने अपने करियर की शुरुआत की। मिड फोर्टीज तक आते आते जब वो टीनेजर थी वो काफी पॉपुलर हो गई थी एंड देन शी मेट राज कपूर साहब 1947 में। साथ में फिल्में करना शुरू किया, प्यार हो गया, वादे हो गए। ऐसा सुनने में आता है कि राज कपूर साहब ने उनको शादी का कमिटमेंट दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो ही इस कमिटमेंट से कतराने लग गए। इधर नरगिस जी काफी सीरियस हो गई। ऐसा भी सुनने में आता है कि वो वकीलों से मिली, मिनिस्टर्स तक से मिली, ये पता करने के लिए कि क्या मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं कि राज कपूर साहब से उनकी शादी हो जाए, क्योंकि राज कपूर साहब ऑलरेडी मैरिड थे तब तक। ऐसा भी सुनने में आता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से नरगिस जी ने काफी अच्छे फिल्म ऑफर्स और काफी पैसा भी गंवा दिया। बट 1956 तक आते आते उनको ये रियलाइज हो गया कि इस रिलेशनशिप का एंड ट्रैजिक होने वाला है, और तब वो राज कपूर साहब की जिंदगी से और आरके फिल्म से बाहर निकल गई,
1: और अच्छे के लिए निकली ना। उसके बाद उन्होंने मदर इंडिया फिल्म की, जहां वो सुनील दत्त साहब से मिली।
0: वो क्या डायलॉग था, इफ इट इज नॉट दी हैप्पी इट इज नॉट दी एंडिंग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Purani Jeans with Charu, only on

नरगिस जी, व्हाट अ स्प्लेंडेड करियर एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हालांकि शी वॉज जस्ट 51 ईयर ओल्ड व्हेन शी पास्ड अवे, पर क्या जिंदगी जी उन्होंने। क्या इंसान, क्या एक्ट्रेस, क्या वाइफ, क्या मदर, क्या सोशल वर्कर थी वो। उन्होंने एज चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की एंड शी टर्न्ड आउट टू बी दिस बोल्ड, फियरलेस, फाइस्टी, इंडिपेंडेंट वुमन थैंक्स टू हर अपब्रिंगिंग। उन्होंने अपनी लाइफ, अपने करियर के मेजरली डिसीजंस खुद लिए। कुछ थोड़े उल्टे पड़ गए, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलों में अपनी चलती कहाँ है। 8-9 साल के उस अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप से वो बाहर निकली एंड शी डिड दिस कल्ट फिल्म मदर इंडिया, जहाँ पे उनको जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला, सुनील दत्त साहब के रूप में ट्रू लव। इस फिल्म के लिए नरगिस जी को वैसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। और उनकी जो लास्ट फिल्म थी ना 1967 की रात और दिन, उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

सुमन कल्याणपुर जी, इनका जन्म 1937 में ढाका में हुआ था, जहाँ पे इनके फादर की जॉब थी, वो बैंकिंग में थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसी जॉब के चलते 1943 में इनकी फैमिली बॉम्बे आ गई, जहाँ पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुमन जी ने संगीत सीखना शुरू किया। उन्हें पेंटिंग का भी बहुत शौक था। सुमन जी ने पहली बार कहीं पर पब्लिक सिंगिंग की तो वो थी ऑल इंडिया रेडियो के लिए। दिस हैपेंड इन 1952, जब वो 15 साल की होंगी। और पहली फिल्म जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो एक मराठी फिल्म थी, ये 1953 में हुआ। और वो पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया ये थी 1954 की मांगू फिल्म। लेकिन जो फिल्म पहले रिलीज हुई वो थी दरवाजा, इसमें सुमन जी ने काफी गाने गाए थे। ऐसे आपको पता है सुमन जी के हस्बैंड रामानंद कल्याणपुर ये बहुत सपोर्टिव थे। जब जब ये रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी उनके हस्बैंड भी उनके साथ रिकॉर्डिंग सेशंस में जाते थे। हाउ अडोरेबल इज दैट। इसी बात पे सुमन जी का गाया हुआ ये अडोरेबल सॉन्ग सुनेंगे, साथ में मोहम्मद रफी जी की आवाज भी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने ये गाना लिखा है। 1967 की फिल्म फर्ज से है ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दोगी शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
3: समाचार
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता हूँ।
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: अपने सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ,
4: मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
9: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
8: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सुमन कल्याणपुर जी की जिस तरह की आवाज थी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज या सक्सेस उनको नहीं मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसकी मेन वजह ये थी कि उनकी आवाज लता जी की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि रेडियो पे गाने सुनाने वाले लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि ये लता जी की आवाज है या सुमन जी की आवाज है। कई बार फिल्म के रिकॉर्ड पे भी गलत नाम लिखा होता था। इस वजह से सुमन जी कहीं ना कहीं लता जी की ऑल्टरनेटिव या उनकी रिप्लेसमेंट बन गई कि जो गाने लता जी नहीं गा पाती थी या मना कर देती थी वो गाने फिर सुमन जी गाती थी। एक ऐसा बहुत लंबा फेज था जब लता जी ने रफी साहब के साथ गाने नहीं गाए क्योंकि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उस टाइम सुमन जी ने रफी साहब के साथ बहुत सारे डुएट्स रिकॉर्ड किए। ये भी सुनने में आता है कि कुछ पॉलिटिक्स भी खेली गई थी जिस वजह से कई अपॉर्चुनिटीज सुमन जी तक नहीं पहुंचती थी। उनकी जिस तरह की आवाज है वो बहुत सारे सोलो सॉन्ग डिजर्व करती थी लेकिन इतने सोलो सॉन्ग्स उन्होंने नहीं गाए। खैर उन्होंने कभी इस बात के लिए कोई एलिगेशन किसी पे नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की। उनका कहना था कि उनको जो मौके मिले वो उससे खुश थी। सुमन जी और रफी साहब का गाया हुआ ये क्लासिक हिट गाना सुनेंगे ब्रह्मचारी फिल्म से पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
6: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
7: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सोनिटेस नेकलेसेस, रिंग्स मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन।
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

पुनर्जन्म की कहानी वाली फिल्म महबूबा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे ना ये पिछला जन्म, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन वाली जो थीम्स होती हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। एंड सम ऑफ द मूवीज टू वॉच आउट, अगर आपने नहीं देखी है ये पिछले जन्म वाली पुरानी हिंदी फिल्में, तो 1949 की महल फिल्म है, 1958 की मधुमती, वेल ओम शांति ओम फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना वो मधुमती के क्लाइमेक्स से ही इंस्पायर्ड है, देन 1968 की नीलकमल, 1967 की मिलन, एंड हाउ टू फॉरगेट 1980 की कर्ज। वैसे राजेश खन्ना साहब और हेमा मालिनी जी, इन्होंने दो ऐसी मूवीज में साथ में काम किया, एक तो जिसका गाना हमने अभी सुना था महबूबा का, और एक कुदरत फिल्म में भी ऐसी ही थीम थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
0: पुरानी जीन्स विद चारू। Only

नीरज साहब का लिखा हुआ गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कवि नीरज हैं, गोपाल दास नीरज जी। इनकी पोएम्स, इनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे। इनकी एक गजल है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू है रान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तू कल यहाँ न होगा उसका गीत विधान रहेगा। नीरज साहब का लिखा हुआ एक और बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: गलत बात है ये, बहुत गलत बात है जी, बहुत गलत बात है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: ये इतना क्लासिक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात फिल्म का 1974 का ये गाना उस साल गीत माला में भाई और बहनों एनुअल लिस्ट में ये नंबर 11 पे था।
1: और कभी कभी मुझे लगता है उस टाइम रोमांटिक गाने इतने पॉपुलर नहीं होते थे, मतलब होते थे लेकिन ऐसे टॉप में नहीं आते थे लिस्ट में। उस साल देखिए आप नंबर 1 गाना कौन सा था उस गीत माला में, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, सैड सॉन्ग। सैड में भी मेलेडी होती है, देखो अच्छे होते हैं वो गाने। अच्छा नंबर 2 पे जय जय शिव शंकर आपकी कसम का मस्ती वाला गाना, नंबर 3 पे भी मस्ती वाला गाना झूठ बोले कौवा काटे बॉबी फिल्म का, और यू नो सैड सॉन्ग्स लाइक तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये सब ये चुरा लिया है तुमने गाने से ऊपर रहे हैं उस एनुअल लिस्ट में। और एक और अति सुंदर रोमांटिक गाना जो हम सुनने वाले हैं वो तो उस साल के टॉप 30 में भी नहीं था, सत्ते पे सत्ता का दिलबर मेरे। अभी सत्ते पे सत्ता का दुखी पे दुखी हो ये शायद नंबर 16-17 पे था, लेकिन दिलबर मेरे तो था ही नहीं टॉप 30 में। गलत बात है, हम नहीं मानते, इतना सुंदर गाना है ये। खैर फिलहाल गाना सुनते हैं, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
4: हेलो
5: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
4: हाँ जी बोलो।
5: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
4: हाँ जी देते।
5: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
4: कहाँ भिजवाना है?
5: तो मैं आपको
4: बता दूँ?
5: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
4: जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
5: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
4: किसको जी?
5: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
4: क्या गिर गया?
5: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
4: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
5: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और
4: पूरा
5: सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
4: हाँ
5: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
4: उठवाना है
5: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
6: हेलो
4: हेलो
6: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
4: कहाँ से बोल रहे?
6: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
11: ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
12: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
8: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
14: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
18: कोहली goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
17: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

22 साल का एसोसिएशन और यूं ही खत्म हो गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक कंपोजर्स शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब की। वही 1949 से 1971 तक इनका एसोसिएशन रहा और इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने बनाए गए। लेकिन 1971 में जब जयकिशन जी की डेथ हो गई, तब ऐसा सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी, इन्होंने राज कपूर को साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे शंकर जी से प्रॉब्लम है और अगर वो म्यूजिक बनाएंगे तो मैं आपकी फिल्मों में गाना नहीं गाऊंगी। और इसके बाद राज कपूर साहब ने शंकर जी से खुद को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया और अपनी फिल्मों में दूसरे म्यूजिक कंपोजर्स को लेना शुरू कर दिया। इस एसोसिएशन की सॉर्ट ऑफ लास्ट फिल्म जो हम बोल सकते हैं वो थी 1971 की कल आज और कल। ये कल आज और कल की फिलॉसफी फिल्म में तो डिफरेंट थी, लेकिन रिलेशनशिप्स एसोसिएशंस के बारे में सोचा जाए तो भी कितनी एप्ट है कि कल क्या रिलेशनशिप था, आज क्या रिश्ता है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: करती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा।
0: सुनो तो,
1: दादा।
0: मोना सुनो तो, दादा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab, mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.
0: Pirani Jeans with Charu, only on

आने वाले के नाम पे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आरजू लखनवी नाम के शायर हैं, उनकी एक नज्म के शेर हैं। आंख से दिल में आने वाला, दिल से नहीं अब जाने वाला, घर को फूंक के जाने वाला, लौट के नहीं फिर आने वाला, आंसू पोंछ के हंस देता है, आग में आग लगाने वाला, दी थी तसल्ली ये किस दिल से, चुप ना हुआ चिल्लाने वाला। ये सुनिए, ये बहुत ही बढ़िया है। डाल रहा है काम में मुश्किल, डाल रहा है काम में मुश्किल, मुश्किल में काम आने वाला। ओए होए, आप भी जरा हमारे थोड़ा काम आइए, मुस्कान को कान तक ले जाइए और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
1: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਟਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡ।

दोस्तों, मंडे का मूड भी ना कभी कभी बिल्कुल बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा लगता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। तो जी हाँ, कभी कभी लगता है कि हम रणबीर कपूर फ्रॉम वेकअप सिड है, यानी थोड़े लॉस्ट, थोड़े स्लीपी। और कभी कभी लगता है कि कल होना हो के अमन है, फुल ऑन स्माइल के साथ, रेडी टू टेक द डे ऑन। वैसे यार, मंडे का ना रियल ट्विस्ट ये है कि आप डिसाइड करते हो कि आज का रोल क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा या फुल फिल्मी एनर्जी। तो आज का सीन सिंपल है, अपने आप को हीरो मोड में डालो तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगेगा। और मुझे जरूर बताना कि आपका मंडे कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा होता है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और मेरा जो मंडे मोड है ना, उसके लिए जो परफेक्ट गाना है वो मैं अभी आपके लिए बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escava la poscavana, sacavana.
2: Gambala.
1: Murga, murga. La virgo a la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: Kaun
4: bol raha hai? Sir, main actually aaj sir have a request kar raha tha. Main sir aaj suna aap wo singing winging sikhate hain sir. To sir gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na wo sir thode different hote hain.
3: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi?
4: Pehle mohalle mein mere snake nikla tha. To snake kahin ghus gaya tha to mere ko pehle wale bolte hain ki bhai aaja tu aaja snake nikal de. Sir main aapko main peshkash kar raha hu. Sir har tarah ke gaane gaa leta hu lekin meri speciality hai snake mein. Sir nagin kya hai sir nagin फिल्म देखी आपने नगीना फिल्म देखी है सर आपने
3: सर कुछ गा के सुनाई
4: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है एनाकोंडा आपने एनाकोंडा फिल्म देखी है
3: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह
4: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
3: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया एनाकोंडा में यही बात है मेरे लिए मैं एक पेशकश कर रहा हूँ मन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा
3: सुन ले बात
4: मेरी बात
3: हाँ सुन पहले बात
4: हाँ सर
3: और इसे बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर
4: रहा है सर बोलिए
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात
4: जी सर
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका

0: Mirchi Morga na vedke sad. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, back.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पे होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.

0: Miss India. आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
1: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
2: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
3: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
2: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
4: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
2: Moral of the story, number one, sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज़ मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: इनकी एंडिंग्स ही अगर अलग होती तो भी क्या ये मूवीज इतनी ही हिट होती। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड में ऐसी तीन मूवीज हैं जिनकी एंडिंग्स कम्प्लीटली अलग लिखी गई थी, यहां तक कि शूट भी की गई थी, लेकिन फिर जो प्रीमियर ऑडियंस है उनका रिएक्शन देख के इनकी एंडिंग कम्प्लीटली बदल दी गई और फिर जो रिलीज हुई उसके बाद ये मूवीज सुपर डुपर हिट हुई। तो मैं ये सोच रही हूं कि अगर ओरिजिनल एंडिंग्स होती तो ये मूवीज उतनी ही हिट होती। एंड द फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज आमिर खान की पीके। जी हाँ, इसके एंडिंग में ऐसा डिसाइड हुआ था कि सरफराज का जो कैरेक्टर है और जग्गू का जो कैरेक्टर है वो एंड में पीके का डांस करेंगे, जो बैटरी रिचार्ज डांस है ना वो करते हुए मूवी एंड हो जाएगी। लेकिन फिर जो टेस्ट ऑडियंस है यानी जो प्रीमियर की ऑडियंस है, इनको ये एंडिंग इतनी पसंद नहीं आई और फिर पीके की एंडिंग कंप्लीटली चेंज कर दी गई। रणबीर कपूर का कैमियो डाला गया ई गोला माँ यानी इस धरती पर और फाइनल एंडिंग उसी को फाइनलाइज किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि बैटरी डांस वाला एंडिंग क्या आपको पसंद आता? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना, वैसे जो अगली मूवी है जिसकी ऑल्टरनेट एंडिंग हो सकती थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही जल्द, लेकिन आप कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ right here on Mirchi, it's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले।
3: शिवानी
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो
2: बदतमीजी
3: नहीं कर रहा हूँ, शिवानी मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Did you know many communities across NJ-12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ-12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ-12. Rooted in NJ-12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: Radio Mirchi, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो हिप्स लिप्स

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go Nautanki, have a funky time.
2: नए देश में नई जिंदगी शुरू करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बात करते हैं नए सफर और नए मौकों की। जी हाँ, यहाँ सब कुछ नया होता है, मतलब कल्चर, लोग और सिस्टम्स भी। और कभी कभी लगता है कि कैसे शुरू करें यार, जब एक्सपीरियंस ही नहीं है। बस वहीं पर AIMS एजुकेशन मदद कर देता है। जी हाँ, रियल हॉस्पिटल ट्रेनिंग, रियल क्लिनिक्स और एक चांस टू रियली ग्रो इन लाइफ, स्पेशली इन अ न्यू कंट्री। और यहाँ सिर्फ एक ही चीज चाहिए, US इक्विवेलेंट हाई स्कूल ग्रेजुएशन और सीखने का जज्बा। बाकी सब AIMS संभाल लेगा। तो अगर आप भी नए हो इस कंट्री में और करियर का पहले कदम की तलाश में हो, तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu, क्योंकि यहां से स्टार्ट होती है एक नई कहानी और एक सेफ फ्यूचर। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: Hello, उसको वहां से मत उठाओ यार. Hello.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब. इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से. हेलो हेलो भाई साहब.
1: हाँ जी बोलो.
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते.
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान. भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ. ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे. ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार. कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको बता दो. नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता है
1: जी? उठवा लेंगे उतना ही हम.
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को. हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है.
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप.
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी.
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको.
1: हाँ
2: सामान उठवा.
1: क्या मजाक कर रहा
2: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार.
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है. हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं. हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
8: Thirty years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
11: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
6: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

स्विंग डीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में डीप टर्मरिक पॉपकॉर्न यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर डीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
5: नमस्ते इस्लाम एंड सत श्री अकाल भाई और बहनों, आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12, ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन। विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड।
6: June 2nd, 2026, अर्ली वोटिंग डेट्स मई 26 टू मई 31st। Sujit Singh is the change we need.
5: Paid for by Sujit Singh for Congress.
7: Oak Tree Road low, best diamond jewelry kosam search is Tanara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
9: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था और इतना ही नहीं बीबीसी एशिया की टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्प्रेरी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कहीं ना जाइए क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
3: Chamakte Sitare 2026.
2: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
4: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
6: तेरा क्या होगा कालिया
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
6: अब मिर्ची खा
8: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फैट गोवा इन दोनों लोकेशन पे शूट हुआ था, लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था। क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सबने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताज़ा करते हैं विद दिस दिल चाहता है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम, दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कम्पोज बाय शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना which is कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था यार, दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिंट नीड बैकग्राउंड डांसर, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये तो मुझे जरूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है, उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacabana. Cabana. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा. टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना. शिवानी मेरी बात सुनो,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ,
3: मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
1: इट्स पगा.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
5: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
8: Did you know many communities across NJ-12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ-12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ-12. Rooted in NJ-12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election Day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Listener MA. बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जानी क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनदर एल्बम, हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए दिल चाहता है का, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Namaste, Salaam and Sastriyakal bhaiyo aur behno. I'm Sujit Singh, running for Congress in NJ12, a historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singhforcongress.org and get engaged.
4: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
3: Read for by Sujit Singh for Congress.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: नो
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुमसे ही बच जाए, या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
3: Chamakte Sitare 2026.
2: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
4: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी अलविदा ना ज्यादा शोर नहीं मचाते, बस एक गीत बनकर दिल में उतर जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का अलविदा केके की आवाज में एक ऐसा ही गाना है, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई है कि लगता है जैसे उन्होंने अपने दिल के अंदर की खामोशी को गाने में घुमा दिया हो। कहा जाता है कि अलविदा का जब फाइनल टेक हुआ था, वो रात को एक ऐसे लम्हे में रिकॉर्ड हुआ था जब स्टूडियो में ना सिर्फ एक फेंट सी स्मूथ सी लाइट थी, जैसे कि गाना खुद डार्कनेस को भी सूथ कर रहा हो। गाना सुनते ही एक अजीब सी पुरानी याद बहुत ही खामोशी से सामने आ जाती है, एक ऐसा गुड बाय जो कभी बोला या शायद कभी बोला ही ना गया हो। कभी कभी लगता है यार, केके ने जब ये गाना अलविदा गाया था तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि किसी एक दिन वो भी हमें बिना बोले अलविदा कह जाएंगे। तो चलिए आज केके की ही याद में उन्हीं के एक बहुत ही बड़े फैन रमा, जो कि रहती है एडिसन में, उनकी रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, ब्यूटिफुल एल्बम विच ऑल द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। तो दोस्तों, आपका भी कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो मुझे जरूर बताना ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं रमा की रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, केके की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।